0: मिलना इवेंट्स लेके आ रहे ने तुहाटे वास्ते रू का सफर टूर। जी हाँ, लाइव मास्टर सलीम कॉन्सर्ट इन टोरंटो 24 जुलाई नो मिसिसागा कन्वेंशन सेंटर दे विच। एक ऐसी शाम जो छू लेगी तुहाडी रूह नो।
1: मैं के अचन जी सलाम कहने
0: दिलानु टुंबन वाले मास्टर सलीम दे सूफियाना तराने अते हाई एनर्जी पंगड़ा बीट्स गुंजनगे 24 जुलाई नो। इवेंट्स दिनाल ता फिर देर किस गल्दी, तारीख नोट कर लो 24 जुलाई। अपनी टिकटा आज ही बुक करो। लॉग ऑन करो www.milnatickets.com ते। स्पॉन्सरशिप अते होर किसी भी जानकारी लई तुसी रोहन शर्मा नु कॉल कर सकदे हो 6477839873। बस रेडी हो जाओ नचण गाउण ते चूमण दे लई सुरां दे बादशाह मास्टर सलीम दे नाल।

खुश रहो बस, तुसी खुश हो, तुसी आबाद हो, तुसी जिंदाबाद हो, असी भी जिंदाबाद हैं। तो नाल दी नाल तुसी रेडियो प्रोग्राम दे विच अपने बिजनेस नू एडवरटाइज करना, तां तुसी मैनू रेडियो उड़ान इंस्टाग्राम ते मैंशन कर लियो, मैसेज कर लियो, या तुसी मैनू 437-870-001 437-870-001 तुसी गूगल ते आरजे प्रभ संधू ट्रांटो मार दियो, रेडियो उड़ान ट्रांटो मार दियो, तो मेरा नंबर थोड़ा मिल जाना है। सो लव यू ऑल, जिंदगी जिंदाबाद ते गुड नाइट।

0: वाह वाह वाह वाह,
1: सौन का महीना रुत प्यार दी,
0: क्या बात है।
1: याद मल्लो मल्ली आ गई सोने यार दी, ते कुड़िया च गल छिड़गी रे, जदों पिंग दे हुलारे नाल सोने सजना हानी आवे पत्तिया ना,
0: वाह
1: ते पत्तिया ना,
0: क्या बात है,
1: पत्तिया ना इक पिड़गी रे,
0: क्या बात
1: है। सौन का महीना रुत प्यार दी,
0: वाह वाह वाह वाह वाह, बहुत वधिया यार। बॉबी तू ना किस दिन आ प्रोग्राम बना के ना मेरे नाल, आपां नेक्स्ट वीक दे विच कोई बनाउणे ते किस दिन आ तेरे तों एक अद्धा नहीं गाना दो चार सुणांगे आपां, ते तेरी आवाज़ नूं पूरे कैनेडा दे नाल जीटीए दे विच लोकां नूं सुनावांगे। वैसे तां तेरा नाम हैगा ही हैगा, लेकिन आपां वी कोशिश करांगे अपने रेडियो प्रोग्राम दे रहे हैं।
1: जी डॉक्टर, थैंक यू जी,
0: बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक यू,
1: थैंक यू।
0: हाँ जी खलील जी,
2: जी तो आपके प्रश्न का उत्तर ये है कि देखिए हर प्रोग्राम, हर आरजे जो डीजे है वो अपने हिसाब से प्रेजेंट करता। आपके प्रोग्राम की सबसे बेहतरीन चीज ये है सारे प्रोग्राम के आप बिगनिंग में बता देते कि देखो भाई दिन भर तो सियासी बातें सब चीजें चलते
0: हैं, हल्ला
2: गुल्ला मार धाड़, ये हुआ वो हुआ, अब शाम के टाइम पे जब फारी
0: सुकून, सुकून,
2: सुकून चाहतों में सुकून की कोई गल करो, कोई चंगे गाने सुनो जरा आराम, वरना सोते वक्त
0: भी आपको अच्छी नींद आए,
2: अच्छी नींद आए और जरा फ्रेशनेस भी होना ना,
0: फिर
2: दुनिया में बड़े से बड़ा पहलवान रहने दो, ये मेरी रीडिंग है
0: जी।
2: ये रिंग के बाद जब फाइट खत्म हो जाती तो थक के चूर चूर हो जाता है।
0: जी जी जी जी,
2: ये बातें।
0: ते कोई अपना रंग का कोई शेर भी एक दो जरूर शेयर करो हमसे।
2: शेर बेहतरीन ये है कि देखिए किसी से मुलाकात हो, बड़ा हसीन है वो, खूबसूरत है, जाहिर है मुलाकात, जैसा आप बोलते हैं सात महीने से मैं सुन रहा हूँ तो जाहिर है कोई चीज पसंद आती ना, पंजाबियों को पसंद करता हूँ ऐसी नहीं करता हूँ ना,
0: जी, जी, जी,
2: वो भी पसंद करते,
0: बिल्कुल सही।
2: तो हर प्रोग्राम में योगदान देना, हर टॉपिक पे बोलना, वो भी एक बड़ी बात है। तो मैं ये कहूंगा कि कितने हसीन है वो लोग जो मिल के एक बार,
0: क्या बात है,
2: कितने हसीन है वो लोग जो मिल के एक बार, आंखों में जज्ब हो गए दिल में समा गए,
0: क्या बात क्या बात। आज तूने जो शेर सुनाया ना अखिलेश जी, वो भी हम बात भी कर रहे हैं सावन का महीना, सावन के महीने को ना मिलाप का महीना मानते हैं।
2: जी जी बिल्कुल,
0: के तो आपने जो शेर भी सुनाया ना ये भी इस प्रसंग में बिल्कुल सूट करता है।
2: शुक्रिया,
0: सो तुसी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप टाइम निकाल के लंदन से यहाँ पे आए, अभी आपने प्रोग्राम अटेंड किया और आपने लंदन भी वापस जाना।
2: जी जी जी,
0: तो
2: हसनैन साहब से भी मुलाकात होगी।
0: हाँ हसनैन साहब,
2: मुझे आवाज से पहचाने, मैं रिसेप्शन पे पूछा खाली तो एकदम आप आ गए हसनैन भाई।
0: अच्छा अच्छा अच्छा,
2: आप खाली जी हैं, मैं बोला जी
0: नहीं, आपका फोन आता ना ये मेरे साथ होते हैं
2: जी,
0: तो इनको पता है कि आप रेगुलर फोन करते हो, मैं बता देता हूँ खलील जी का फोन आया, तो आप फिर बोलते भी जो थोड़ा उर्दू मिक्स है आपकी जुबान में, तो ये फिर बड़ा आनंद मानते हैं। सो बहुत बहुत शुक्रिया जी। दोस्तों साडे प्रोग्राम का हुण समाप्ति का समा हो रहा है, ते हसनैन जी की हाजरी कल भी नहीं लगेगी, अज आ तो गए पर हुण साडे कोल टाइम नहीं है, ते कल इन्हां दी बुकिंग हुई हुई है उत्थे मलाई रेस्टोरेंट दे विच, ते परसों इन्हां दी बुकिंग साडे विश्व पंजाबी भवन दे विच है। तुसी आओ, इन्हां दी गायकी दा आनंद माणो, लाइव देखो इन्हां नूं, उच्चा फुटा उच्चा लंबा गभरू 6.5 फुट दा तुहानूं तुरला फा के उत्थे मिलना, ते तुसी इंजॉय करोगे इन्हां नूं मिल के, इंसान भी बहुत अच्छे ने। सो कल मिलांगे किसी नवें विशे दे नाल, तद तक दे लई खुश रहो, आबाद रहो और

0: multiple locations in GTA. For more information, visit rajdhanisweets.ca.
1: डाइवोर्स या कस्टडी दी लड़ाई जिंदगी दी सब तो औखी लड़ाई हुंदी है क्योंकि तुसी उस शख्स नाल लड़ रहे हुंदे हो जिस नाल तुहाडा घर परिवार ते तुहाडे बच्चे सांझे ने उस वक्त कई सवाल उठते ने कि प्रॉपर्टी किस कोल जाएगी कस्टडी किस नूं मिलेगी ते जिंदगी दी सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस कोल रहणगे
2: SNS लॉयर्स को इन सारे सवालों दे जवाब ते तुहाडे हक ले लड़न वास्ते लियाकत है अपने हक जानन लई या सलाह लैण लई अज ही SNS लॉयर्स नूं कॉल करो 416-655-2000
3: Get ready! GTA!

सिर्फ से सिर्फ मिलना इवेंट्स दे नाल। ता फिर देर किस गल दी, तारीख नोट कर लो 24 जुलाई। अपनी टिकटां अज ही बुक करो, लॉग ऑन करो www.milnatickets.com ते। स्पॉन्सरशिप अते होर किसी भी जानकारी लई तुसी रोहन शर्मा अते प्रभ संधू नू कॉल कर सकदे हो 6477839873 या 4378700001 ते।

0: Team for Entertainment. 647-400-6862-416-303-4444.
1: मम्मी पापा दे वीजे लिए सुपर वीजा इंश्योरेंस लेनी है ते बंटी बबली दा विजिटर वीजा भी लगवाना है मेरा ते खर्चा ही बड़ा हो जाना है
2: शमी पठल होरा ने तुहाडा खर्चा छोटिया इंस्टॉलमेंटा च बदल देना है
3: वधिया बेनिफिट वाली इंश्योरेंस पॉलिसी वाजिब कीमत ते लेके दिंदे ने शमी पठल
4: सुपर वीजा ते विजिटर इंश्योरेंस दी बेस्ट डील लई याद रखो इंश्योरेंस एडवाइजर शमी पठल जी दा नाम
5: 416-917-7763 416-917-7763 Life Insurance, Visitor Insurance, Super Visa Insurance, Critical Illness, Disability Insurance, RESP, Travel Insurance, Convert Expensive Mortgage Insurance to Term Insurance.

0: पंजाबी लहरां
1: प्रोग्राम समर्पित है रंगले पंजाब नूं
0: पंजाबी बोली ते पंजाबी सभ्याचार नूं
1: गुरु साहिबान पीरां फकीरां दी धरती नूं
0: ठंडियां छावां जीआं मावां नूं
1: चौड़ियां छातियां वाले गभरूआं नूं
0: चरखा कतदियां ते पींगां झूटदियां मुटियारां नूं
1: लोक गीतां भंगड़े अते गिद्धियां दीआं छणकारां नूं
0: प्रोग्राम पंजाबी लहरां
1: हफ्ते दे 7 दिन प्राइम टाइम ते पंजाबी लहरां पंजाबीयत दी सेवा विच
2: सच कह जिया हुंदा
3: चुल्ले ते पकदी रोटी सच है
4: मिट्टी चुगदी फसल सच है
3: गुरु दी बाणी सच है सतगुर प्यारे सच्चे दी बाह फड़दे हुंदे ने

सतगुरु होए दयाल तो सरदा पूरी है, सतगुरु होए दयाल ना कबहू झूरी है, सतगुरु होए दयाल तो दुख ना जानिए, सतगुरु होए दयाल तो हर रंग माणिए। अकाल पुरख के दिते हुए सारे रंगा माणते हुए जुड़ चुके हैं जी एक बार फिर एक खूबसूरत सवेर चढ़ती कला वाली सवेर के खूबसूरत रेडियो प्रोग्राम पंजाबी लहर लैके। मैं थोड़ा मेज़बान प्रभ संधु तो मेरे नाल पंजाब की धरती तो रमेश हुशियारपुरी जी जुड़नगे। स्टूडियो घड़ी के मुताबिक 7:03 हो चुके हैं, थोड़ा साढ़ा साथ हूँ तो लैके 8 बजे तक बने रहना।

मैगलिन दा रोड़ा कुड़ा मेरे साहब दी वड़ी तणके जिन्नी कदर ना मेरी मैंने तख्त बिठाया साइया जे वेखा मैं अमलां वल ते कुछ नहीं मेरे पल्ले जे वेखा तेरी रहमत वल तां बल्ले बल्ले बल्ले त बल्ले बल्ले बल्ले उस दे रहमत तां बख्शे सत्कार को फिर तो ब्रूहां ते दस्तक दे रहे अमनदीप सिंह पैनीपाल वालों आप सबनों शुभ सवेर गुड मॉर्निंग सत श्री

0: रात आ मैं छड़ दिनी आ पर जनाब चले किथे हो
1: मैं चलिया स्काईडम ऑटो एंड बॉडी सेंटर जेडे करदे ने मेरी कार दी केयर बेस्ट सर्विस ते फुल रिपेयर
0: ए होई हन स्काईडम ग्रुप ऑफ कंपनीज जेना दिया जीडीए दे विच चार लोकेशन ने मेरी फ्रेंड अनु दी एक्सीडेंटल कार भी फिक्स करके नवी बनाती सी
1: जी हां कारा दे नाल नाल बसा अते वड्डे ट्रकां दी हर तरह दी रिपेयर अते बॉडी वर्क दा काम भी कीता जांदा है रेट वास्ते बेस्ट पैकेज प्रोवाइड कीते जांदे ने वधेरे जानकारी ले कॉल करो 905 874

0: Visa Medical Insurance number hai ga ji 416-817-6500. This is Harpreet Saini, Charter Life Underwriter and Certified Health Insurance Specialist from Top Choice Insurance Agency.
1: जब HK Movers का हो साथ, लोकल एंड लॉन्ग डिस्टेंस के लिए टेंशन लेने की नहीं है बात. HK Movers, होम ऑफिस अपार्टमेंट्स एंड डिलीवरी, बिग और स्मॉल, वी मूव इट ऑल. वी ऑल्सो शिप कार्स, वी ऑल्सो डू स्टोरेज. 30 years एक्सपीरियंस, वी सर्व विद अ स्माइल. HK Movers, गिव अस अ कॉल. मिस्टर हरमिंदर, 416-524-6704. 416-524-6704.
2: हासल फ्री मूविंग के लिए HK Mover. IPL चल रहा है only on Karo Stream. Watch successful IPL season only on Karo Stream. www.karostream.com or call 905-204-1313.
3: A to Z किचन कैबिनेट भाई वाह क्या किचन कैबिनेट तैयार करते हैं लक्की भाजी दी बनिया किचन कैबिनेट देख के गुआंढ भी बहाने नाल तुहाडे घरे आउंदे हन शीशे नाल भरिया किचन कैबिनेट वास्ते डिजाइनर किचन कैबिनेट वास्ते A to Z किचन कैबिनेट 416-720-7073 905-720-7073 ते कॉल कर सकदे हो
4: नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज
5: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा कॉल 905-460-8888 दैट्स 905-460-8888
4: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ
6: ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਪਲਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸੈਲੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਿੰਗਸ ਬੈਸਟ ਫੋਨ ਪਲਾਨਸ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲਾਨਸ ਚ ਸੇਵਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨੋ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਜਾਂ ਲੇਟੈਸਟ ਫੋਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਕਵਰੇਜ ਨਾਲ ਸੈਲੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਸੈਲੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਸੇਵ ਟੂਡੇ ਇਟਸ ਦੈਟ ਈਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਨੀਅਰੈਸਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ cellularpoint.ca ਤੇ ਵੇਖੋ ਸੈਲੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਮੋਰ ਫੋਨਸ ਮੋਰ ਪਲਾਨਸ ਮੋਰ ਚੋਇਸ
7: यार इना इंश्योरेंसा ने ते धुआ कढ़ाता वधिया ते जायज रेट कित्थों मिलेगा
8: टॉप फाइनेंशियल इंक तो जो अपनियां बेहतर ते भरोसेमंद सेवावां लई जाने जांदे ने
9: क्रिटिकल मॉर्गेज आरईएसपी आरआरएसपी विजिटर इंश्योरेंस सुपर वीजा स्पेशल डिसेबिलिटी प्लान फॉर ट्रकर्स जे थोड़े कोल 20 नालों ज्यादा ड्राइवर ने ता थानू अनबीटेबल प्राइस लेके देंगे
8: कॉल करो 20 सालां दे तजुर्बे वाले सुरजीत सिंह पड्डा जी नू 647-300-3100
9: या मिलो 70 डेल्टा पार्क बुलेवार्ड यूनिट 11 ब्रैम्पटन

0: ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: Imagine having a Muskoka getaway that works for you, even when you're not there. Discover a rare opportunity at an exclusive open house in Huntsville, where peaceful surroundings, year-round enjoyment, and endless outdoor adventures meet proven investment potential. This exceptional property offers 3 bedrooms, modern finishes, and lake access nearby. Curious to learn more? Visit the open house Saturday, July 25th from 1 till 3, or contact Jay Gundam, Remax Gold Realty, Inc. at 416-265-2222.
2: कमाल का कैच था यार, यकीन ही नहीं आ रहा।
3: तुम्हें इस पर यकीन नहीं आ रहा तो ये सुनो, सेव ऑन एनर्जी वाले मुफ्त इलेक्ट्रिक हीट पंप दे रहे हैं अगर तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिक या ऑयल हीटिंग है।
2: इस बात पर मुझे पूरा यकीन है, वो तो इंस्टॉलेशन का 100% खर्चा भी खुद उठाते हैं। अगर तुम्हारे घर में ऑयल हीटिंग है तो वो ऑयल टैंक भी बिल्कुल मुफ्त बाहर निकाल कर देंगे, और हीट पंप से तुम्हारे हीटिंग बिल्स 50% तक कम हो सकते हैं।
3: तुम्हें ये सब कैसे पता?
2: क्योंकि मैंने भी पिछले साल ये लगवाया है।
3: अच्छा, वो क्या वेबसाइट थी?
2: saveonenergy.ca/eap.
0: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca.
4: मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है,
5: पर ढिलो वीडियो जो मर्जी आज एबनीजर एंड गोर रोड 905-204-1313 ढिलो वीडियो.com। होर कोई सेवा?

0: एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
1: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129, 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 9054608888, दैट्स 9054608888।
0: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
2: ओ पंजाबी बोले ना ते मैं इंग्लिश विच अड़दा सी, ओ मेरी लुक ते मरदी सी ते मैं ओदे लक ते मरदा सी। सत श्री अकाल जी, मैं हां थोड़ा अपना रोशन प्रिंस ते तुसी सुन रहे हो वतनों दूर रेडियो।

0: रोकी तो अपनी इंश्योरेंस किस्तों करवांदा यार।
1: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
0: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
1: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे,
2: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी।
1: जेडे लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-509-1509 ते।
2: याद रखो, मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू,
1: 416-509-1509
2: और विजिट insuranceforyou.ca।
3: दोस्तों, देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो नू या चलो AM 530 ते 24/7 जिन्ने भी प्रोग्राम आउंदे ने उन्हां नू सुनन वास्ते जां देश प्रदेश नू लाइव देखण वास्ते लॉगिन करो साडी वेबसाइट नू www.deshpradeshradio.com या www.deshpradeshtv.com। लाइव सुनना चाहुंदे लाइव ते क्लिक कर लो, जे वाच करना चाहुंदे आ तां ओह ते क्लिक करो, जां फिर अपने IPTV बॉक्स दे उत्ते पंजाबी सेक्शन क्लिक करो, ओहदे उत्ते जाके देश प्रदेश टीवी नू क्लिक करो, ओहदे तुसीं सुन भी सकदे हो, वेख भी सकदे हो 24/7। सानू माण है कनेडियन होण दा, ते कनेडियन होण दे नाते सोफा मार्ट ते कैसा लेदर जिहड़े के इक्को ओनर ने और कस्टम मेड सोफे तैयार करदे ने, कनेडियन मेड। अपने घर दे लिविंग रूम दी गिनती मिनती करके लेके जाओ ते हंसा सोफा तैयार करवाओ। 4 सीटां वाला, 5 सीटां वाला, तुहाडी अपनी मर्जी आ। 11x11, 10x10 ਦਾ ਸੋਫਾ ਸੈੱਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ 120 ਡੈਲਟਾ ਪਾਰਕ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈਗਾ 24 ਰੀਗਨ ਰੋਡ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ। ਨੰਬਰ ਹੈ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਫੋਨ ਦਾ 905-792-8053, 905-792-8053। ਸੋਫਾ ਮਾਰਟ ਔਰ ਕੈਸਾ ਲੈਦਰ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ।
4: ਚਲੋ AM 530 ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਰੇਡੀਓ।
3: ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 905-500-6444।
5: 905-564-6444। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ ਇਨਕਮ, ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ? ਆਪਣੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਓ। ਕਾਲ ਕਰੋ ਉਮਰਪ੍ਰੀਤ ਚਾਵਲਾ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੋਰਗੇਜ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ, ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ

रहमत को बातों बातों में बहला के पी गया। उदी उदी जटाएं आती है, मुतरिबों की नवाएं आती है, किसके गेसू खुले हैं सावन में।